0: நீங்க வந்தா இந்த லெட்டரை குடுக்க சொல்லிட்டு அவசரமா எங்க போயிட்டாரு.
1: உடம்பு சரியா இல்லப்ப இவர் எங்க வெளியில போறாரு?
2: அன்புள்ள கோபால், உன்னை சந்திக்கும் ஆர்வத்தினால் அலைந்து அலைந்து திரிந்தேன், உன்னை சந்தித்து விட்டேன். ஆனால் காலம் கடந்து விட்டது. இன்று இந்த சந்திப்பிலே உன் மீது ஒரு பெரிய பொறுப்பை சுமத்துகின்றேன். என் மனைவியின் வாழ்வை பாழாக்கிய வஞ்சகன் அழகு பிள்ளையை வாழ விட்டு நான் சகித்திருக்க முடியாது. அவன் வாழ்வை இன்றோடு முடித்து விடுகிறேன். அதன் விளைவாக நான் இனி வாழ முடியாது. ஆகையால் என்னையே நம்பி வந்த அநாத குழந்தையையும் டாக்டருடைய தர்ம சொத்துக்களையும் உன் பொறுப்பில் விட்டுவிட்டு செல்கின்றேன். இப்படிக்கு அன்புள்ள சுந்தரன், என்ன இந்த மாமா அழக பிள்ளைய கொலை செய்ய போறாரா? எங்க மாமா கொலையாளி ஆகப்போறாரா? ஐயோ பார்வதி, நான் அவசரமா திருச்சிக்கு போனோம், போயிட்டு வந்து மற்றதெல்லாம் பேசுகிறேன். ஜாக்கிரதையா பார்த்துட்டு
3: பக்தரே, பகவானுக்கு முன் அஞ்சலி செய்கிறாயா? லோகமாதாவின் முன் யோக நிலை காட்டி நிற்கிறாயா? பஞ்சமா பாதகங்களின் உறைவிடமான உன் நெஞ்சத்திற்கு பக்தி ஒரு கேடா? ஒரு பத்தினி பெண்ணின் மாதத்தை பந்தாக உருட்டி விளையாடி இருக்கிறாயே, அந்த வெறி விளையாட்டுக்கு பரிசு இதோ.
4: ஆகாஷ்வாணி ஹே, சங்கீத் கே அகில பாரதிய கார்யக்ரம் மே ஆஜ் பிரஸ்துத் ஹே தேவவ்ரத் மிஸ்ர கா சிதார் வாதன். वाराणसी के प्रतिष्ठित संगीत घराने में जन्मे देवव्रत मिश्र ने अपनी मां प्रमिला मिश्रा से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की और अपने पिता पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्र के मार्गदर्शन में सितार की विधिवत शिक्षा प्राप्त की। आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार देवव्रत मिश्र ने ठुमरी परंपरा और बनारस घराने के गायकी की विशिष्ट बारीकियां अपने दादाजी ठुमरी सम्राट पंडित महादेव प्रसाद मिश्र से सीखी। इस प्रभाव ने उनके सितार वादन को एक अनूठी पहचान दी। सितार वादन की शिक्षा में पोस्ट ग्रेजुएट और गोल्ड मेडल के साथ संगीत प्रवीण देवव्रत मिश्र आईसीसीआर के सूचीबद्ध कलाकार भी हैं। उन्होंने भारत और विदेशों में कई प्रतिष्ठित मंचों पर सितार वादन की सफल प्रस्तुतियां दी हैं। इनमें तानसेन संगीत समारोह, संकट मोचन संगीत समारोह, सप्तक संगीत समारोह और अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला प्रमुख हैं। उन्होंने अमेरिका, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, इटली और जर्मनी जैसे कई देशों में अपने सितार वादन से संगीत प्रेमियों को मंत्रमुग्ध किया है। देवव्रत मिश्र को नेशनल यूथ फेस्टिवल अवार्ड, स्वरमणि अलंकरण, काशी रत्न संगीत शिखर सम्मान, बीएचयू कौस्तुभ सम्मान, जर्मन बेस्ट जैज क्रिटिक अवार्ड और वर्ल्ड म्यूजिक विजनरी अवार्ड यूएसए से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार प्रशांत मिश्र। देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का आरंभ राग जोग से कर रहे हैं। विलंबित और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध हैं।
5: This is Akashwani. In the national program of music tonight, we bring you sitar recital by Devvrat Mishra. Born into distinguished music gharana of Varanasi, Devvrat Mishra received initial music training from his mother Pramila Mishra and underwent formal training in the sitar under the guidance of his father Padmashri Pandit Shivnath Mishra. An A-grade artist of Akashwani, Devvrat Mishra received distinctive lesson of Thumri tradition and vocal style of the Banaras Gharana from his grandfather, the great Thumri exponent Pandit Mahadev Prasad Mishra, an influence that lent a unique identity to his sitar playing. Postgraduate in sitar and Sangeet Praveen with gold medal, Devvrat Mishra is also an empaneled artist of ICCR. He has delivered successful sitar performances on numerous prestigious platforms, both in India and abroad. Notable among these are the Tansen Sangeet Samaroh, Sankat Mochan Sangeet Samaroh, Saptak Sangeet Samaroh, and the International Dhrupad Mela. He has captivated audiences with his sitar recitals in many countries such as USA, Canada, Spain, France,

0: आप सुन रहे थे राग जोग। देवव्रत मिश्र अब प्रस्तुत कर रहे हैं राग गोरख कल्याण में सितार वादन। मध्य लय रूपक ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में है।
1: यू जस्ट हर्ड राग जोग। देवव्रत मिश्रा इज नाउ प्रेजेंटिंग सितार रिसाइटल इन राग गोरख कल्याण। मध्य लय इज सेट टू रूपक ताल एंड द्रुत इज इन तीन ताल।

0: राग गोरख कल्याण के बाद देवव्रत मिश्र अपने सितार वादन का समापन दादरा ताल में निबद्ध राग मिश्र पीलू में धुन से कर रहे हैं।
1: आफ्टर राग गोरख कल्याण, देवव्रत मिश्रा इज कंक्लूडिंग हिज सितार रिसाइटल टुनाइट विद धुन कंपोज्ड इन राग मिश्र पीलू सेट टू दादरा ताल।

0: ये थी सितार पर प्रस्तुत राग मिश्र पीलू में धुन। कलाकार थे देवव्रत मिश्र। संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज आपके साथ तबले पर संगति की प्रशांत मिश्र ने। आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर रिकॉर्ड इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: दिस वॉज धुन इन राग।